क्लिप म्यूजिक कम करो जैसे क्लिप है वो डिफाइन करता है स्मूथ स्लिपरी मूव्स तो उसमें तीन चार मूव्स हैं तो लाइक पहले मैं उसमें नमस्ते करती हूँ जब इंटरनेशनल आती हूँ नमस्ते एंड दिस पूरा ये चिल्ला लो जैसे मैं स्लिपरी बताया तो मैंने खुद धक्का दे के और घूमना ऐसा कुछ करके देन दीज मूवमेंट्स ये सब जो मेरे वो दिखाता है ना ये सब चीज़ें हो गई मुझे यही बताता कि आप हर चीज़ हंस हो गए क्योंकि नाम इन्होंने दिया ही चिढ़ा देते मुझे बहुत ज़्यादा हाँ सो हाँ दीज थिंग्स ऑल्सो जो मैं करती हूँ बैटल में मैं अपने आप को मानती हूँ कि दो पर्सन है मेरे अंदर एक सिमरन है और एक ग्लिब है तो ग्लिब के दो मतलब है अगर सिमरन का देखा जाए तो बहुत टॉगेटिव पर्सन जो कि मैं जनरली हूँ और अगर ग्लिप का देखा जाए तो वो मेरे मूव्स डिफेंड करता है स्लिपरी स्लीक बहुत स्मूथ

0: Ochoa goes through the fence.
1: Here you go, Bobby.
2: तेरे अंदर वो इतना हंगर था कि मुझे जीतना है जीतना है यार इस साल जीतना है तो इंजरी तो कुछ नहीं करना है 2023 से आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हुई है रेड बुल से क्योंकि मेरे पास एक टैग लग गया कि रेड बुल DC1 विनर है यार ये
3: रेड बुल जीतना था कि इंटरनेशनल जाना था तो रेड बुल ही एक ऑप्शन था अगर वो जीतेंगे तो इंटरनेशनल जा सकते हो ना

0: पहले तो जब देखा मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था ये ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोग तो मतलब स्टंट काउंट करते हैं, एज स्टंट काउंट करते थे वो टाइम पे। वो एरा में जिसको आता था ब्रेकिंग उसका इज्जत करते थे लोग एरिया वाले। इज्जत मतलब अगर वो कोई बर्थडे में जा रहा है तो उसके लिए चेयर्स आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा, केक आ रहा, सब ऑटोमेटिक चल के आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को भी चाहिए इज्जत भाई, मतलब समझेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उन लोग अप्रोच किया कि मेरे को भी करने का, तो वो लोग ने मार के भगा दिया, नहीं सिखाएंगे बोले। एक सेलिब्रिटी टाइप ऐसा घूम रहा हो, ऐसा कोई रैंडम आगे बोलेगा मेरे को सिखाएगा क्या एक्टिंग, नहीं हो सकता ना। तो ऐसा भगा दिया मार के। फिर मैं उन लोगों को 2 महीना फॉलो किया दूर से, ऐसा 100 मीटर से ऐसा देख रहता था क्या क्या कर रहे, फिर अपने साइड जाके प्रैक्टिस करता था। एक टाइम पे 150-200 बी बॉय एक एरिया में, और अभी कोई है ही नहीं क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा था, डेडली था, तो सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। लोगों को जॉब करना था, कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग भाग रहे थे पुलिस से। तो गनी एग्जाम्पल, शफी, वसीम भाई, लोग सब लोग सेलिब्रिटी थे हम लोग के लिए। मतलब अगर वो लोग हम लोग के प्रैक्टिस प्लेस पे आ गए तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, चाहे 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ देखेंगे सब। तो बस उन लोग के वजह से ही हम लोग को इतना हिप हॉप मालूम पड़ा।
1: मैं इसको बोला कि तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोला रहे, मतलब कि वसीम भाई ये लोग बाकी लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज थे। अब भी मैं दूध लेके आया इसके लिए इसके घर पे।
0: टाइम बदलता है भाई।
2: फर्स्ट नॉलेज, उसके बाद में दूसरा कुछ।
1: थोड़ा मजाक मस्ती है, मैं थोड़ी खींच देते हैं मेरी, क्योंकि एज भी हो रही है मेरी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है करने से, बोले भाई बस कर दो, हो गया। मेरा नाम वसीम है और मैं रॉकफिश शुरू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड, और मैं वन ऑफ द फर्स्ट बी बॉय में से एक इंडिया में आता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी।
3: यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ्लोर बनाया था, हम लोगों ने खुद के पैसे से ये चीज़ बनवाई थी।
1: पूरा जो एरिया है ना, ये

0: फिशर एरिया प्रैक्टिस करके घर पे जाते थे हम लोग की बॉडी से जो स्मेल आती थी फिश की हर कोई गालियां सुनता था घर पे 2011-12 बहुत अच्छा टाइम था वो टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी आर्टिस्ट लोग से बीबोस लोग से बैटल्स के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता था
1: नहीं नहीं नहीं नहीं भाई ये सब नहीं कर सकते भाई ये सब नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे हिप हॉप के वजह से भाई हिप हॉप हम लोग ये सब नहीं सिखाता
2: हो जाता है भाई सीन रियल हो जाता है लाइक यू नो बैटल थोड़ा इंटेंस हो जाता है कि यार
0: एटीट्यूड क्या होता है सामने वाला इतना डर जाए कि अपनी चीजें भूल जाए एक एटीट्यूड होता है नहीं बाकी मैं ही हूँ खाली यहाँ पे

0: The mass shaking like what?
1: कपड़ों से तो बहुत वो है इसको रोज जाना
2: क्योंकि हमारा ब्रेकिंग है फैशन के बारे में मम्मी मैंने मम्मी का शादी की ड्रेस को पहना तो मम्मी कितनी खुश होकर देखती रहती है उसको पूरे दिन जितना ब्रेकिंग को नहीं देखती उतना ही सब चीजों को देखती
1: है शादी की बड़ी
2: तो मैं जैसे बता रही हूँ ना मम्मी आज 1 लाख ले रही है 1 लाख लोगों ने देख ली क्योंकि इनके लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी फिर मैं बोलूँ मम्मी 1 मिलियन हो इतना इतना चला गया उतना चला गया तो मम्मी बहुत खुश होती थी सबसे ज्यादा जो मम्मी ने फेस किया है वो यही कि मेरे मम्मी को फैमिली से पूरे आसपास के लोगों से बहुत

0: को मिला है मेरे बारे में, ये आपको पक्का आपका नाम डूबेगी, कहीं चल जाएगी घर छोड़ देगी।
1: मैंने तो बैठना ही छोड़ दिया फिर लोगों को।
0: मम्मी रोती थी मेरी बैठ के, क्योंकि मम्मी मुझसे तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं बता देती मम्मी कुछ भी गलत नहीं करी, और मम्मी रोती थी कि मैं क्या करूं, मैं सुन नहीं सकती अपने बच्चों के लिए इतना गंदा ये वो।
1: ज्यादा लड़कियां तो करती नहीं, लड़के ज्यादा वो है तो सुनने को बहुत मिलता था वो तो, लेकिन मैंने सुना सबकी।
0: जो लोकल बैटल होती थी उसमें साइफर में ज्यादा लोग होते नहीं थे, 4-5 लोग खड़े होते थे, तो मम्मी बोलती थी कि 10 लोगों के बीच में नाच के आ गई और पैसा इतना खर्च करके आ गई, तो तू बड़ी बड़ी बैटल से
1: छोटी छोटी बैटलें सब अटेंड करती थी।
2: This with the GG rap karu HR51 gang mera needy Friday se freaky FRIENDS mein main Phoebe let me be be habibi.
3: There were a lot of jams on small scale, people used to like you know cypher a lot, people used to like exchange a lot and it was very raw. So breaking के बहुत सारे layers हैं। There's footwork, there's top rock, there's power moves, there is freeze. These are the core things जिसमें बाकी सारी चीज़ fit in होती है।

काफी मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपटीशन था मेरा और मेरे को काफी भारी मूव करने पड़े। स्टार्टिंग में मेरे को हार्ड लगा था, देन मेरे को पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं ब्रेकिंग क्यों कर रही हूँ, एंड देन आई मेड इट। Put your hands up so I know you're hardcore. Breaking, to be honest, बहुत hard है। Breaking कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब उसमें सीखते जाओ, उसमें explore करते जाओ, खुद अपना character ढूंढ रहे हो, फिर power moves unlock करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सीखते जाओगे, hard पे जाओगे, उतना आपको injuries के chances है। कोई मैट नहीं वैट नहीं, फ्लोर पे कर दिया, गिर गए, गर्दन पे लग गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कुछ ना कुछ नहीं इंजरी हो गई।

0: ब्लड स्वेट एंड टीयर
1: ब्लड स्वेट एंड टीयर
2: तो बेसिकली पहला मेरा लोअर बैक गया था फिर उसके बाद शोल्डर टूटा था फिर मेरा लिगामेंट गया फिर अभी रिसेंटली वापस कॉलर बोन टूटा है

0: Because I'm the best b-boy in India. No cap.
1: On the way. Let's go.
2: हम लोग यूजुअली ऐसा ड्रीम करते हैं कि लाइक इंटरनेशनल लाइक यू नो वर्ल्ड में एंटर करना है हम लोग को देखना है वो एक्सपीरियंस करना है कि और लोग कैसे डांस करते हैं लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है वो लोग हाईएस्ट ऑफ हाई लेवल पे कंपीट करते
3: हम चले गए बाहरों
4: में मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को एरिया में इज्जत मिले बहुत कुछ मिला है कपड़े पहनने का ढंग पासपोर्ट भर रहा है पैसा कमाना समझ में आ रहा है लोगों से बातचीत कैसे करना है वो ऐसा बहुत सारा चीज मिला मतलब जो भी अभी आज है सब ब्रेकिंग नहीं दिया
5: The Indian scene is just growing and it's stronger than some of the countries I've been to.
6: I thought that the scene was a pretty similar level to the UK.
5: They just need a little bit like of guidance, maybe some ability to travel, and they could really do some damage.

0: machine. It's very explosive when he breaks, but he takes his time between. The pauses are always clear. Tornado is very real.
1: दिखता है उनके emotions, दिखता है उनके face पे कि वो कितना सब कुछ करके वहाँ पर पहुँचे हैं और उसको बहुत real लगता है.
2: मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं अगर जॉब भी ढूंढूंगा तो मेरे को ऐसे खुद भी मिलेगा डिलीवरी का, वॉचमैन का, यही मिल सकता, उसके ऊपर नहीं मिलेगा. ठीक है, बट वो 15 साल में मैंने खुद को इतना डेवलप किया ना कि मैं इंडिया को कुछ 15 कंट्री रिप्रेजेंट कर चुका हूँ.
3: इतिहास बन गया है थर्ड प्लेस.
2: मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में सिखा चुका हूँ. जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसको क्या करना है.
4: पूरा लाइफस्टाइल है ये बेसिकली, और वो स्ट्रीट एम्पावर्ड है. आई डोंट थिंक कि हाई क्लास और लाइक यू नो पीपल कैन ऑल्सो, आई मीन दे कैन डू इट 100%, दे कैन नॉट लीव इट. You know, they lack something inside.
1: जो अभी जो हमारा ब्रेकिंग है, अब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. 10 साल बाद हम लोग ही ओजीज बन जाएंगे, हम लोग ही उनके लिए हिस्ट्री होंगे. जिनको मैं देखती आ रही थी, मैंने उनके बराबर पहुंची और फिर उनके आगे निकली, तो मैं अपने आप को मानती हूँ ऊपर. मैं चाहती हूँ और बिगर, एटलीस्ट उनके अंदर हंगर होगी इसको हराना यार, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो जागे, मुझे किसने हराया अगले साल मैं उसको हराऊंगी. Barbie is like my great competition, क्योंकि हम लोग 4 साल से फाइनल्स में मिल रहे हैं हमेशा.
5: हाँ, मुझे बारबी अच्छी लगती है. मतलब वो जिस तरह डांस करती है, जिस तरह वो मूव करती है, जिस तरह वो फ्लिप्स वगैरह मारती है, तो बहुत अच्छी लगती है. उनका काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है. ऊपर से वो मुंबई से है, तो मुझे मुंबई बहुत पसंद है. मुझे मुंबई जाना है, तो अगर मैं जाऊंगी तो उनसे वहां पर जरूर मिलूंगी.
1: अभी तो बारहवीं घर जाके रहे, उसके बाद मैं चाहूंगी. नहीं, बारहवीं के घर जाके रहे.
0: Clip is like, I don't need to run, I can walk. You can see the difference with her and Barbie. So strong like it runs in the family. I've got the haters out of breath. It's talking about dinner when I got them this prayer. Barbie is like very powerful and very fresh and new.
6: This is BC One India. The stakes are high here. But sometimes you just need to take a deep breath and just relax and just be in the moment.
4: Bro, this is my peace. Like, you know, where I'm at the most peace. You know, this was the first Red Bull BC One India trophy, 2015. I started off watching Red Bull BC One, right? So वो time पे I was like, अगर ये इंडिया में होएगा कभी भी तो मैं ही विनर होगा. ये लाइक आई मैनिफेस्टेड इट एंड दिस इज माई रियलिटी, लाइक एवरेज किड फ्रॉम जोगेश्वरी ईस्ट टू समबडी.
1: फ्लाइंग मशीन मेरे लिए एक चैंपियन है.
7: 12 के 12 महीने फॉर्म में रहता है.
8: उसका ट्रेनिंग, उसका सिस्टम बहुत अलग है.

0: अगर मैं टूर्नामेंट जीत गया तो मैं हिस्ट्री बना लूंगा दुनिया के अंदर.
1: He is the greatest of all time, without a doubt. Nobody has as many Evo titles as this man right here, and he's done it again.
2: क्या कह रहा है अभी?
3: पासपोर्ट रह गया और पासपोर्ट रह गया आपका. ठंड हो रही वहाँ पे?
2: हाँ वहाँ पे तो मेरा ख्याल है वहाँ पे और न्यू ऑर्लियंस में से देखा था तो दिन में 15 से 12 था टेम्परेचर वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी. बस मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, तो बस जल्दी जल्दी करो. मम्मा कैसे गए? मम्मा नीचे
3: कहाँ पे?
2: तो रानिया कहाँ पे? नीचे मम्मा पास है.
3: रानिया सोई और स्टिक आपकी?
2: स्टिक मेरी गाड़ी में. गाड़ी में
3: ठीक है.
2: दुआ करना. हाँ फिर मैं बैग में रहता हूँ उसके ऊपर से जा रहा हूँ फिर मैं. ठीक है
4: हाँ चलो दुआ करना.
2: 3 घंटे बाद फ्लाइट है.
3: ठीक
2: है और सोई है बीबी? हाँ चलो निकल रहा हूँ मैं, गाड़ी खड़ी है. चलो ठीक है मम्मा,
3: निकलता हूँ.

0: जब टेकन खेलना मैंने स्टार्ट की थी तब मैं कोई 7-8 साल का था और मेरे बिल्कुल घर के सामने हुआ करती थी शॉप गेम की, फ्रूट्स की दुकान थी ना, मतलब बाहर उसके फलों की दुकान थी और फलों की दुकान के अंदर जाके गेमें थी और गेमों में लाइन से कुछ 3-4 गेमें लगाई थी। पहले पे टेकन थी, फिर दूसरे में दूसरी मिशन गेम्स होती हैं जो बच्चे खेला करते हैं, इस तरह करके एक शॉप थी। तो अपने कज़न्स के साथ स्कूल से वापसी में जाया करता था गेम खेलने।
1: छोटा सा था तो वीडियो गेम में चले जाना, शुरू से इसको शौक था गेमिंग का ना।
0: वो कहते थे कि अरसलान ना एक बच्चा आता है सबको हराता है, इस तरह करके थोड़ी एक इज्जत थी मेरी। वहाँ पे मुझे कोई नहीं हरा पाता था, मतलब वहाँ पे अगर 10 लोग आते थे रोज़ खेलने के लिए मेरी एज ग्रुप या मेरे से बड़े, तो मैं उनको ईजिली हरा लिया करता था। तो थोड़ा फेम मुझे मिलना स्टार्ट हो गया।
2: In the dim, smoky arcades, Arslan Ash began making a name for himself. But in Pakistan, gaming was still seen as a useless distraction, and arcades were thought of as bad places.
0: Even कि मुझे बहुत मार भी पड़ा करती थी, मुझे अभी भी याद है कि जो मेरे एक भाइयों में से एक भाई थे तो वो मुझे बहुत मारा करते थे। उनके एक दफ़ा तो आर्केड सेंटर के अंदर जाकर मुझे बहुत मार पड़ी। और मैं भागने की कोशिश कर रहा था कि मैं चला जाऊँ कि मेरी बिस्ती हो रही है वहाँ पे, जो लोग मुझे इज्जत करते थे वो कल को मैं अगर गया तो मेरी बिस्ती करेंगे वो, लेकिन उन्हें वहाँ पर जाके मारा। तो उसके बाद मुझे एक दो दिन में गया भी नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, फिर बेशरम था, मैं जाना भी था, मैं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद नॉर्मल चीज़ हो गई। लेकिन फिर दोबारा 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ, मार पड़ी बहुत ज़्यादा अब्बू से भाइयों से। तो
1: मैं जाके ले आती थी, वो डर थी मैं कि उसको मारी ना पड़ जाए, तो मैं ना इसके पापा के यहाँ से पहले इसको घर ले आओ।
3: अरसलान ने भी काफ़ी मतलब कि मार खाई है सबने। मुझे जब घर से निकाल देते थे तो मैं अरसलान की तरफ आता था,
4: हम छुप छुप के खेलते थे, हमें मार भी पड़ी है काफ़ी। हमने एक दूसरे से मिलना है गेमिंग में जाना है तो छुप छुप के जाते थे कि तुम्हारे घर वालों ने कहा है हमारे बच्चे से ना मिले, ये उसे गेमिंग में लेके जाते हैं।
3: निकाल देते थे हमें घर वाले, उनके पास आखिरी हल यही होता था कि इनको निकाल दें, तो हम खुश हो जाते थे, ठीक है निकाल दिया अब सारा दिन गेम खेलेंगे।
0: आई थिंक उनको गेमिंग पसंद नहीं थी क्योंकि माहौल अच्छा नहीं था वहाँ पर। वहाँ पर जिस तरह कि मैंने बताया कि वहाँ पर लोग अच्छे नहीं आया करते थे, बहुत बुरे लोग आया करते थे। अब तो ऐसे ही नहीं है, अब तो अच्छे बन चुके हैं क्लब्स, लेकिन तब लोग बहुत बुरे होते थे वहाँ।
2: Arslan's obsession with gaming was hard for his family to accept. For many Pakistani parents, gaming as a career was unimaginable, and the pressure to follow a traditional path was heavy on him. But Arslan held on to his dream, proving that with passion and hard work, even the wildest dreams can come true.
5: Unbelievable! Absolutely unbelievable!
6: Arslan Ash is the real deal. That dude is the real deal.

0: यार टूर्नामेंट का सीन है कि सबसे जो पहली स्टेज है वो है कि आपने अपना ग्रुप पिक करना है आपका। मैं लास्ट 2 बार गया हूँ तो 4 ग्रुप होते हैं ए बी सी डी, तो मैं हमेशा ए में आ गया हूँ। मतलब ए
1: अच्छा
0: बहुत मतलब मुश्किल का है, बहुत अंत की है मेरे लिए, मैं बी सी डी में से कुछ रख करूँगा। ए में लग सक ए ईजी भी हुआ मेरे लिए, बहुत ईजी भी हुआ, और फिर भी ए में नहीं जाना। पहला तो मैंने इसलिए चला गया, मैं ए फॉर अरसलान ए में, तो नी पीछे से आ गया कितना अरसलान भी उलसान भी आ गया, मतलब सारे टॉप के प्लेयर मेरे ही ग्रुप में आ गए। इस साल मैंने कहा नहीं, मैंने फिर लास्ट टाइम वो लकी ड्रा हुआ था, लकी ड्रा में मेरा ये आ गया। इस बार मेरी फर्स्ट रैंकिंग है, तो अब मैं खुद चेक कर सकता हूँ कि मैं किस ग्रुप में जाना चाहता हूँ।
2: Arslan Ash's journey was born from hardship. At a young age, he suffered the heartbreaking loss of his father, leaving his mother to raise him and his siblings alone.
3: इसके पापा तो रेलवे में थे, पेंशन ही आनी। उसमें क्या होता है कुछ, मैंने फिर घर में मेहनत करनी, सिलाई वगैरह करती।
4: तो मैं तो नहीं कमाता था, मैं तो था भी 12 साल का, और हम क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो तब वसाइल भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था घर में भी।
2: But from this struggle came an unexpected blessing. The dim glow of arcade screens became his escape. And in the game's pixels, he found a world where he was in control.
4: तो मेरे लिए ये हुआ कि मेरे लिए थोड़ा सा रास्ता खुल गया कि मैं ज़्यादा गेम खेलने लग पड़ा, ज़्यादा बाहर जाने लग पड़ा, लोगों से मिलना पड़ा। रात को टेंशन होती थी, हाँ 5 मिनट के लिए जाना, तो 5 मिनट के लिए पहले 5 मिनट बाद ही घर आना, अब तो 5 मिनट के लिए घंटे बाद ही घर आना, तो मसला नहीं है।
3: पहले इसके पापा तो इधर दूर नहीं जाते, ज़्यादा करीब करीब ही रहना, इससे मैंने जाके ले आना, तो बस फिर बच्चे सवाद हो जाते, कहते कि अब कौन रोकने वाला, तो चुप करके निकल जाना। ये फिर इसकी त्वजा ही बहुत थी कि मैंने ये भी खेलनी है, मम्मा जो मर्जी कर लें, तो मैंने ये नहीं छोड़ी।
4: उस दिन उनको बहुत दुख हुआ था जिस दिन मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं है, और एक बंदा आप पे सारा कुछ लगा रहा है, सारा रात सलाइयाँ करके सब कुछ करके कि बंदा पढ़ ले और कुछ बन जाए अपनी लाइफ के अंदर।
3: मैंने कहा कल मामा मैंने ये करना, मैं कहा पढ़ लो तुम अच्छी तरह पढ़ लो, कुछ बन जाओ।
4: तब मैं दिल दिल में सोचा था कि मैं इतना पैसा कमाऊँगा इंशाल्लाह, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्राउड फील कराऊँगा मम्मा को। लेकिन वो कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है, मैं किस तरह यकीन, मतलब आप तसल्ली दे सकते हो लेकिन जब तक आप करो ना तो यकीन नहीं आता। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने रिस्क लिया लाइफ के अंदर, मैंने फिर बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया, मैं कहा मुझे एक बार मौका दें आप, अगर मैं नहीं कर सका तो मैं जो कहोगी ज़िंदगी के अंदर वही करूँगा, अगर मैं नहीं जीत सका तो जैसे जैसे कहोगी वैसे ही करूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा इसके अलावा, मुझे बस एक मौका ज़िंदगी में चाहिए अपने लिए।
2: The arcades became his safe place, turning his pain into strength, sharpening his skills against endless challenges.

0: हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी पहुंच गया मैं, आपकी कॉल आ रही थी। अभी पहुंचा हूँ, अभी मैंने अंदर चेक इन किया, होटल के अंदर आया हूँ। मैं थोड़ी देर तक कॉल करता हूँ, ठीक है? यार आतिफ क्या हाल है, ठीक हो? पहुंच गया ना तुम भी? अभी इवेंट आ रहा है यार एक, मैंने अभी देखा ट्विटर के ऊपर ना, सभी आ रहे हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है चलते हैं आतिफ, रात को मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ तेरे साथ।
1: Hungry for practice and eager to improve, Arslan Ash decided to enter an underground tournament organized by the local fighting game community. It was the perfect chance. A gathering of skilled players under one roof, a warm-up before the Tekken World Tour finals, and an opportunity to feel the competition's energy. Feeling confident, Arslan waited for his match, not expecting much of a challenge just yet.

0: KO.
1: We always say it, it's a bloodbath, but this time, this is the last one ever for Tekken 7.
0: Oh, yeah.
1: There are so many killers.
2: In a surprising turn, I'm trying to make it the showtime. Joe Crush, the opponent from the night before, wins the final match of the LCQ.
0: But oh my goodness, your LCQ champion, Paragon Joe Crush.
3: Congratulations to Joe Crush on another awesome victory.
2: The crowd cheers as Joe's victory cements his rapid rise, while Arslan watches closely.
4: I don't know if it was like destined to, you know, like I just was winning. Like yesterday we played a practice tournament against Arslan. My first hard match was against Arslan and I, you know, won that. So I was like, wait, what's going on here? You know what I'm saying? Like, so yeah, man, it's just, it feels crazy. Something's in the air, you know?
3: We thank you guys for staying up with us, watching from wherever in the world you're watching from. But we'll see you guys in the morning. Look forward to the violence and the chaos that is going to go down in these group stages. And we'll catch you guys tomorrow. Everybody be easy.
5: Yeah, Joe Crush qualified kar gaya. Aaj LCQ tha uske andar se. Tension nahi hai mujhe, lekin us wo young player hai aur काफी अच्छा खेलता है, उसने हराया था, लेकिन मैं काफी कॉन्फिडेंट हूं कि मेरे पूल में वो आया तो मैं उसे हरा सकता हूं, लेकिन फिर भी थ्रेट तो है वो, और मैं चाहूंगा कि मेरे पूल में वो ना आए क्योंकि मैंने बाकी सबके खिलाफ तो तैयारी की हुई है बहुत अच्छी, तो देखते हैं। बट कांग्रेचुलेशंस टू जोकर फॉर क्वालीफाइंग।
2: Arslan Ash was always a risk taker, constantly searching for new challenges. He dared to dream beyond his city's borders. While others saw gaming as a dead end, Arslan saw it as a way to greatness. Even when no one believed in him, he believed in himself.
5: मुझे याद है एक दफा फिर ना मैं इमरान बैठे गेमो सेंटर के बाहर, तो मैं इमरान से कह रहा हूँ कि यार इमरान, मुझे लगता है कि ना मैं यहाँ के लिए बनाई नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए बनाई नहीं हूँ, यहाँ का लेवल और मेरे लेवल में बहुत फ़र्क है, मैंने बाहर जाना है और मैं ना बाहर जाऊँगा और मैं जीतूँगा।
6: पर तब हमारे पास रिसोर्सेज इतने नहीं थे होते कि कोई अपनी टिकट खरीद के दुबई भी चला जाए,
7: तो मैं इसकी बात पे यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने कहा शायद इसने अहम ही बात कर दी है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि इसके पास तो पैसे नहीं है, ये कैसे जाएगा।
2: He knew greatness wasn't defined by where you start. It's about how far you're willing to go.
5: हम जिस सेंटर में खेला करते थे, उस सेंटर वाले आदमी से मैंने कहा कि ना मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैंने बाहर जाना है और तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो भी आता है मैं हराता हूँ, मैं जीतता हूँ, तुम मेरे पे पैसा लगाओ। कहता मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ करूँ। कहा चलो मैं तुम्हारा पासवर्ड बना देता हूँ, तो 5,000 रुपया उसने लगाया, मेरा पासवर्ड बनवाया, मैं उसके साथ ही गया, उसने पासवर्ड बनवा के दिया। फिर एक बंदा था दानी भाई, उससे मैंने कहा कि दानी भाई जीतेंगे तो आधे पैसे आपके आधे पैसे मेरे, मुझे बाहर भेजो जैसे करके। कहता कि 20,000 की स्टिक मंगवा के दी, आर्केड स्टिक, जिससे आप बाहर प्रोफेशनली खेल सकते हो। तो पाकिस्तान में वाहिद बंदा था, पहला वाहिद बंदा था, इसके पास स्टिक थी।
2: It wasn't just a joystick. It was Arslan's magic wand, through which he cast his gaming skills for the world to see.
5: टिकट मेरी दानी भाई ने कराई थी, खर्चा वगैरह घर वालों ने दिया मुझे, तो पहला टूर्नामेंट मैं गया ओमान में खेल। पहली दफ़ा ट्रैवल करा था, जहाज में बैठा, काफ़ी घबराया भी जब बोल रहा नीचे आ रहा है पहली दफ़ा, और ओमान में फिर मैं रुका जो दानी बे के दोस्त थे कुछ, जहाँ पे आप देखा होगा बाहर जाते हो फैक्ट्री के लोग बैठे होते हैं, उन्होंने हॉस्टल बुक किया होता कमरा, वहाँ पे बैठे होते हैं साइडों पे, वहाँ पे मैं ठहरा, टूर्नामेंट खेलने गया, वहाँ पे मैं जीत गया।
2: Arslan's first win came easily. The competition in Oman wasn't tough, and the prize was only a modest gaming console. But within that small victory, Arslan saw something much bigger. FVC Major 2018 in Malaysia, a tournament where he'd face legendary Korean and Japanese players he'd only admired from afar. This wasn't just an opportunity, it was his moment to prove he could compete with the world's best.
5: I went to the tournament. I saw the Koreans, the Japanese, the Ulsan, everyone was coming. So I was Jinding, Korean top player. He came and I said, I'll play FT. एफ टी खेला तो उल्टे सीधे करेक्टर ले रहा, मतलब एंजॉय कर रहा है कि हारा जीत रहा कोई मसला नहीं है।
2: In Tekken, FT stands for first to 10, meaning the winner is the first to win 10 rounds to claim the match.
5: मैंने किसी को कहा यार ये लोग सीरियस नहीं खेलते, कहते नहीं टूर्नामेंट में सीरियस खेलते, मैं कहा पता नहीं टूर्नामेंट में मिलता है कि नहीं मिलता है, मुझे मैंने इसको हराना है सीरियस करेक्टर

0: तो उसने एडी लिया, एडी का प्लेयर था, उससे मैंने बहुत बुरा मारा और लोग परेशान हो गए कि जंडिंग ने एडी लेके हार रही है। कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, मैं पाकिस्तान। तो वो मैप पे गूगल पे सर्च करना पड़ा पाकिस्तान है कहाँ पे, मतलब सुना है पाकिस्तान में भी गेम खेलते हैं।
1: फॉर द फर्स्ट टाइम द टेकन वर्ल्ड हर्ड द नेम पाकिस्तान एंड इट वाज अरसलान एश हु मेड इट हैपन।
2: हेलो, हाँ बस उठी हूँ मैं, तैयारी फुल है, और दुआ करना, मम्मा से भी कहना कि दुआ करें।
3: फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वन ऑफ द ग्रेट्स, वन ऑफ द गोट्स, वन ऑफ द बेस्ट टू एवर डू इट, प्लीज मेक सम नॉइज फॉर नी। Make some noise for Arslan Ash! The choices have been made, the groups have been filled, and you guys are about to see some good-ass Tekken. And I know it's early, but make some noise!
1: Arslan Ash, ever the strategist, picked his pool wisely. No knee or Atif butt to face early on. The tension in the venue is intense as the round robin unfolds.
4: Final round. Fight.
1: The crowd's energy builds with each match. And Arsalan knows his moment is approaching. But how did a young boy from Lahore learn to handle such pressure? To find that answer, we must turn back time. Malaysia, 2018.
5: So Ulsan going with the white Kazumi and Arslan. I didn't realize their names are pretty similar.
0: अब मेरा मैच है, मैंने कहा इसको तो मैं हरा लूँगा। मैं स्टेज पे हूँ, उलसान वहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, वो अपनी एलईडी पे है, मैं अपनी एलईडी पे बैठा हूँ। मैं खेल रहा हूँ, मैं टांगे मेरी शेक करने लग पड़े। मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं तो इस बंदे को हरा लूँगा। पहले मेरी ऐसे ऐसे करके टांगे बहुत ज़्यादा तेज थे, इस काम पर लपड़ी में टांगा, और मैं नर्वस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या फीलिंग है, क्यों? और वो रिलैक्स है, वही बंदा, वही गेम। एक दिन पहले उसको मैं जीतने नहीं दे रहा, बहुत ही मैं नर्वस था। उसने सेम गेम की, कोई प्लान चेंज नहीं था, लेकिन मैं हार गया। तो फिर पता लगा कि यार इंटरनेशनल स्टेज पर खेलना और किसी कोरियन या प्रो के खिलाफ खेलना, ये आपको एक्सपीरियंस से आता है। फिर मेरा मैच आ गया नोबी से, और नोबी के साथ भी सेम चीज़ हुआ। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं उससे भी हार गया ना, इस तरह बिल्कुल लास्ट राउंड पे, लास्ट पॉइंट पे हार, तो मुझे पता लगा कि यार स्टेज की गेम और स्टेज का प्रेशर हैंडल करना और अपने आप को कंट्रोल करना, नर्व्स को कंट्रोल करना भी ये अलग गेम है। डजंट मैटर कि जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस करो, जितने मर्जी आप अच्छे हो, जब तक आप स्टेज पर परफॉर्म नहीं कर पाते, उसका प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, यू आर नथिंग।
1: Arslan Ash, known for learning from his mistakes, has overcome early challenges. Yet, the heat is on in New Orleans as Olsen dominates Group A, securing a top 8 spot in the finals. With Group B matches about to begin, all eyes turn to Arslan Ash to deliver. Arslan feels the weight of expectations. Every win counts, but the road ahead is long and tough.
6: Look at this Group B, man. We have the four-time EVO champion, Arslan Ash, in this group.
7: We have to our next match, which is going to be a run back for the ages,
6: oh
7: MYK.
6: My goodness.
7: We got to see, you know, if Al is going to sit down and play against Arslan Ash, who's the player that he's worried about?
6: Let's find out.
8: So, in the European tournament, the most important player in the tournament is definitely going to be the top player.
1: The bright lights shine down, and the crowd buzzes with excitement.
7: Pakistan, you already know, started playing with Tekken 6, best memory of Tekken 7, becoming a double EVO champion, best result in TWT 2023.
1: It was a high-stakes mirror match between Ao and Arslan Ash, both using Zafina and Kunimitsu, a character Arslan had owned into his secret weapon and good luck charm. Known for his mastery of female characters, choosing Kunimitsu seemed inevitable.
6: Favorite stuff from Tekken 7.

0: battle.
1: At EVO, it just felt like, again, just momentum control completely in Arsenal Ashe's favor. A lot of really, really just compact play, too.
0: Oh my goodness.
2: Wow. The pressure was building, and Arslan could feel it in every breath. But with a final blow, he claimed a victory in the first match. The crowd erupted, but beneath the cheers, this moment carried a deeper meaning.
1: For so many players on this tour, especially so many of the qualified...
2: In a male-dominated society like Pakistan, where heroes are often men, Arslan Ashe broke the mold.
3: अपने वक्त में बड़ा फेमस हो गया था कि वो लड़कियों से खेलता है और उसका इवन लड़कों ने नाम रख दिया था कि अरसलान बच्चियों वाला
4: लव्ज इस्तेमाल होता था बच्चियां वाला तो ये जो फीमेल्स करैक्टर खेलते थे ना मेल्स नहीं खेलते थे ये उनके लिए इस्तेमाल होता था
5: वो अजीब मेंटालिटी लोगों की थी तुम वो लोग बिस्ती फील करते थे क्या हम लड़कियों से हार रहे हैं
6: माशाल्लाह से पाकिस्तान में सबको अल्फा बनने की पड़ी रहती है तो यू नो अल्फा बॉयज हमेशा से मेल कैरेक्टर से खेलते हैं ठीक है तो वो ठीक है ना बॉयज को सूट भी करता है
5: और जो लड़कियों से खेलता था उस पे भी वो कहते थे तो बच्चे ना खेलने मतलब समझ आ रही है आपको कि एक शेम होती थी क्योंकि और क्योंकि लोग उनसे खेलते नहीं थे लड़कियों से तो उनकी प्रैक्टिस भी नहीं होती थी उनके खिलाफ मतलब एक चीज़ आप करोगे ही नहीं तो उसके खिलाफ प्रैक्टिस किस तरह करोगे आप तो ये वजह थी कि मैंने उनसे खेलता गया और फिर मैं पाकिस्तान में जीता भी उससे जूलिया से फिर नीना से लीली से
3: क्योंकि उसको पता था कि लड़कियाँ इस गेम के अंदर बहुत तेज़ हैं लड़कों की नस्बत
7: फिर उनके पास प्लस फ्रेम ज़्यादा होते हैं उनके पास डैमेज ज़्यादा होता है यानी कि उनको टेकन में मेल की नस्बत जो है ना एडवांटेज ज़्यादा होता है वो इसलिए इनसे खेलता है
8: आई फील दैट दैट डेफिनेटली प्लेज अ पार्ट इन हाउ ही perceives not just himself but you know the sort of environment that he was brought around his mother was really back there to support him and he really reveres that sort of empowerment that came from her
9: ha zafina ka maine bataya tha maine kaha is character se khelo to wo jaise wo jump karti na ghoomti hai to wo bada acha mujhe laga na dekh rahi thi main isko khelte hue main kaha nahi ab ye naya character aaya to isse khelo
10: zafina ka maine pucha tha aap kyun khelte hain uske sath तो उन्होंने कहा था कि मेरी मम्मा ने कहा था ये आप इसके साथ खेलो ज़फीना के साथ
8: I don't think that you know like you could probably ever come up with a character that's female and Arslan would not gravitate towards This is girls game not it's all skill Arslan
0: breaking rules so and what's it real Arslan Ashe, you know, ever since he picked up Zafina and then he moved over to Kunimitsu, he really started like mastering the character, finding the intricacy. And the Kokoma, he kind of just plays whoever's cheap, right? So let's find out what Kokoma feels about his performance in the CWT so far.
11: 좀 긴장은 솔직히 많이 되는 것 같아요. 왜냐면 마지막 철권 세븐의 이제 무대이기도 하고 당연하게 이제 이 자리에 밟았으니까 어떻게든 뭐 살아남을 수 있을까라는 걱정도 되고.
0: Zafina from Arslan and Fang from
2: Kokoma. Arslan, now fully confident, dismantled Kakuma's defenses with precision, pushing himself closer to his ultimate goal. The crowd roared as Arslan won the match.
0: So far undefeated in group stage play.
2: He shook off the pressure, his belief growing stronger with each step forward. In this final showdown, Arslan Ashe isn't just chasing victory. He's determined to take the top spot, and he won't settle for less.
5: I think you made Zen me baat dal di gayi thi meri ammi ne isko main kahunga ki first aana hamesha na mujhe raat ko padhai bhi karti thi kafi zyada ki first position lekar aani hai तो वो मुझे बड़ी ट्रिगर की मतलब जब छोटा होता है बच्चा उसके आप जहन में जो भी चीज़ डाल देते तो वो इस तरह से सोचना पड़ता तो मेरी जो मेंटालिटी थी थिंकिंग थी भाई पहले तो बता भी था कि फ़र्स्ट आना होता क्या है फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब आके होगा क्या तो वो मेरे जो अंदर थिंकिंग थी ना ये वाली तो वो डिवेलप होना शुरू हो गया कि फ़र्स्ट आना है हमेशा स्कूल के अंदर तो मैं स्कूल में फ़र्स्ट आना शुरू कर दिया पहले मैं सेकंड आता एक दफ़ा सेकंड आया था तो मम्मी को पसंद नहीं आया शायद कहती नहीं एक दफ़ा फ़र्स्ट आना क्योंकि खुद भी अपने स्कूल में हमेशा फ़र्स्ट आया करती थी तो वो भी क्या करती थी कि तुमने भी फ़र्स्ट आना
9: बस पेपर होने ना जब हमारी क्लास में तो खुशी होती थी कि मैडम ने कहा नाम लेना लीजा तो बड़ी खुशी होती थी कि खड़ा कर देना कि ये फ़र्स्ट आई है तो इसी तरह था कि बच्चे भी सार कामयाब हो तो माँ बाप तो खुशी होती है
5: तो इस तरह ही गेम में मुझे फिर फाइटिंग गेम में काफ़ी इंटरेस्ट आया क्योंकि उसमें फ़ाइट कर रहे हो इसमें जीत हो रही है किसी कोई हार रहा है तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया कि यार जीतना है क्योंकि अगले को हराने का भी मजा आता था।
2: Arslan Ash remains unstoppable in round robin. His momentum is undeniable. There's no turning back.
1: Arslan Ash, 2-0 over Rife in
2: his stage. Next big challenge loomed. Anakin from the USA.
0: It's Anakin representing Atlanta, Georgia.
2: Backed by the roaring support of the home crowd.
1: Representing his character on tour all year long.
2: Anakin fought bravely.
0: Today in this group stage to even give Arslan a loss.
2: But Arslan stayed calm, his focus unshaken. With sharp precision, Arslan broke through Anakin's defenses and claimed victory.
1: All victories in group stage for Arslan.
2: This win not only secured his top spot in the group, but also marked a historic moment. Arslan finishes the group stage on top.
1: You know he came into this event knowing that this is his last chance for Tekken 7 to be able to put a stamp on this event in particular. It's eluded him in the past, and he showed you he is ready.
2: An achievement he had never reached before in this TWT Finals history. As Arslan Ash advances into the top 8 from the winner's side, one question lingers in his mind. Will his ultimate rival Nee make it too? The fierce rivalry that began at the 2018 OUG tournament in Dubai is now reaching its peak in New Orleans.
5: I think आपको अपनी जर्नी में एक ऐसा rival मिलता है जिसको आप हराना चाहते हो हर सूरत में और आपके लिए काफी in a way काफी helpful रहता है तक मंजिल तक पहुंचने में।
2: But defeating the very hero who inspired you is never easy.
5: 2018 December में OUG की बात है टूर्नामेंट का नाम OUG तो मैं स्टेज पे हूँ अनाउंस हुआ नी वर्सेस अरसलान ऐश आ जाए तो मैं स्टेज पे गया तो सेम सीन हो लपड़ा मेरी टांगे रुके ही ना मैं ऐसे रुकूँ मेरी टांग ऐसे हो जाए मैं मतलब इस तरह मतलब लिटरली इस तरह शेक कर रही थी कि मैं खुद नहीं बता सकता बहुत तेज़ी से बहुत ही अजीब फीलिंग थी वो वाली।
2: After struggling under pressure against Olsen and Nobi in Malaysia 2018, the thought of facing Nee seemed unrealistic. If he couldn't handle lesser-known pros, how could he take on the best? Desperate for one last chance, he pleaded with his first-ever sponsor, V-Slash, who was now on the verge of pulling out, just to get a ticket, relying solely on promises and prayers. But how could he possibly defeat the greatest of all time?
5: पर मैंने ना हिम्मत इकट्ठी की कि नर्वस नहीं होना जो भी है हार जाऊंगा लेकिन मैं नर्वस नहीं होना तो मैं बाहर गया और मैं जाके ना काइंड ऑफ मेडिटेशन कह लो या कुछ भी कह लो मैं आंखें बंद करके इस पर लाइक कि मैंने बस जो भी सोच रहा था कि अपनी ना एनर्जी कलेक्ट कर रहा था कि जितनी मैंने गेम आज तक खेली है ज़िंदगी के अंदर वो मैंने और अम्मी का भी सोच रहा था बहुत ज़्यादा कि वो प्रेशर था तब प्रेशर था मेरे पर बहुत ज़्यादा कि मैंने वो प्रेशर और जो सीए की जो फीस और सब कुछ मेरे जहन में आ रहा था कि मैंने वो सब चीज़ों को ना आज बदलना है मैंने उनको पे बैक करना है जो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं दानी भाई जिसने वीज़ा की मदद की जिसने किसी भी तरह की मदद की मेरे और मैंने अपना नाम बनाना आज मेरे पास इसके बाद शायद मौका आए ना।
2: But Arslan defied fate. Against all odds, he stepped up and conquered the greatest. The underdog had risen. The impossible was now his reality.
12: Six rounds straight, मार दी मैंने
5: और वो न्यूज़ बहुत वायरल की कि अर्सलान ने 6th राउंड में को मार्डेस्टर नहीं एक भी मैच नहीं जीता।
2: In the grand finals, Arslan achieved the impossible, a fairy tale ending to an unimaginable journey.
12: 그 전에는 이제 좀 본 적이 없던 스타일이었어요. 왜냐면 공격과 방어의

0: 밸런스가 너무 좋았기 때문에.
1: In one night, everything changed. The quiet underdog from Pakistan dethroned the undisputed king, catapulting himself into the spotlight.
2: Twitter खोला कोई हजार followers हो गए. बड़ी जा रहे हैं, बड़े लोग follow कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से एक player आया है, पाकिस्तान का भी कोई नाम है. YouTube पे लोग मुझे कर रहे हैं. पहली दफा मैं YouTube पे videos आने लग पड़ी. और मुझे पता नहीं famous लोग Markman जो अब Evo पे जिनका वो जो है director सारी कि किसने को हराया है, पता नहीं कहाँ से उठ के आ गया पाकिस्तान से. तो वो चीज़ को एडजस्ट करते करते 3-4 दिन लग गए मुझे. फिर पाकिस्तान आया, लोगों ने बड़ी वाह वाह की कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया ये वो. तो अब हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा तुमने नीको हराया. फिर इमरान की मुझे कॉल आई, मुझे अभी भी याद है, मैं एयरपोर्ट पर था. तो कहता है इस्लाम तुम्हें याद है तुमने बात की थी पहले कि तुम हरा सकते हो नीको. और मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था. कहता भाई फिर तुमने आज ना पूरा किया. और मैं उस वक्त वाकई रोया था उसकी बात सुन के कि हाँ मैंने एकदम ख्वाब देखा था एक कि मैं बाहर जाऊँगा. और तुम्हें भी यकीन नहीं किया था मेरे में तो. लेकिन कहता कि तुम्हें यकीन था अपने आप पे, तुमने किया है काम.
1: Now, with the stage set for the ultimate showdown, this is more than just a rivalry. It's destiny. Arslan Ash isn't only chasing a win. He's chasing a dream only he dared to believe in.
3: Look at this. This is the original Tekken 4 PlayStation. And Harada just signed it, one. And two, this is like the OG cases, bro. They're trying to get rid of physical media. So the fact that you have this, yeah, is actually, this is like an instant collector's piece now.
4: और भाई टेंशन कम हुई?
5: प्रेशर का बहुत टेंशन थी कसम से. अब आगे जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन चलो पूल तो क्लियर किया.
1: As excitement and nerves soar, Arslan waits to see who will move forward from Group C and D.
6: Is the next one.
7: But before we get there, we got a chance to talk to Atif about how he felt about this Tekken World Tour performance. Let's take a listen.
8: इस साल में जो काफ़ी ज़्यादा जो टूर्नामेंट खेल चुका हूँ मैं पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में खेल चुका हूँ, तो मेरी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है. और
1: जो क्रश पुश रेनिंग चैंपियन आतिफ बट टू द ब्रिंक.
9: They're making some noise out there.
1: But Atif barely escaped defeat, keeping fans on edge. For the first time in a long time, Atif looked vulnerable. Against all odds, Atif Bhatt, the reigning champion, failed to secure his place in the top eight. Atif Bhatt narrowly escapes defeat against Joe Crush. Atif Bhatt's loss to Low High shocked the arena, but the real drama unfolded in a nail-biting tiebreaker, a match that would decide his future in the tournament. The atmosphere was tense, every move critical, yet, in an unexpected twist, the strong contender fell short.
10: John Ding takes it. Rank to run.
11: Before top eight.
10: Eliminate.
11: Before top eight.
10: Eliminate.
1: Against all odds, Atif Bhatt failed to secure his place in the top eight.
2: To be very honest, I was happy. I wouldn't say that I was sad.
12: Pure gamer can never be anyone's friend. गेम के अंदर वो उसके साथ कम्पीट ही करेगा,
2: क्योंकि वो वाहिद एक ऐसा प्लेयर था जो कि मुझे हरा सकता था. अगर वो टॉप एट में आ जाता, ग्रैंड फाइनल में आ जाता, तो मैं खुश भी था और एज अ फ्रेंड मैं उदास भी था. तो फीलिंग मिक्स्ड ही थी अगर मैं खुल के बात करूं.
1: Meanwhile, Arslan's fierce rival Nee made it to the top eight. Though from the losers bracket, adding even more tension to their heated rivalry.
13: Looked like he's gonna be in there for tomorrow.
2: और नहीं लूजर में था तो इससे अच्छी बात हो ही कह सकती है. वो तो हार ही जाता था मेरे तरफ से. मैं तो दुआ ही कर रहा था कि नहीं हार जाए. और मैं तो चाहता सभी हार जाए. मैं चिंचो.
1: Many dismissed Arslan's early wins as luck, but he took their doubt as a challenge.
2: किसी ने मेरे जेन में बात डाली थी कि तुम नहीं को जितना मर्जी हरा लो जब तक उससे तुम बिग स्टेज पे नहीं हराओगे. मैं कहा बिग स्टेज क्या है, क्या है बिग स्टेज? किसी टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल में, स्पेसिफिकली ईवो के ग्रैंड फाइनल में तुम उसे हराओगे, तब तुम्हें लोग कहेंगे तुम सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो दुनिया के अंदर.
1: फॉर अ पाकिस्तानी लाइक अरसलान एश, द बिगेस्ट फाइट ऑफ्टन हैपेंस ऑफ स्टेज

0: getting a visa. After endless struggles and near misses, he arrived in Japan just in time for his match. He fought through the loser's bracket, taking down top players. In the grand finals, he defeated Filipino Tekken legend AK, resetting the bracket and claiming victory. A win that shocked the world. But one question remained. Could he prove the world wrong by defeating me? At EVO USA, Aslan answered that question with unmatched skill. Defeating me to claim an unprecedented double victory. In a single year, he rewrote history, establishing himself as the undisputed king of Tekken.
1: Defeating me, of statement wo maine wahan pe apne liye create ki ke now I am the best in the world. Winning two egos in a year, abhi tak kisi ne kiya nahi tha life mein.
0: His dominance silenced skeptics who had called his earlier successes a fluke.
2: People were still saying it was a fluke for some reason, but after the second time, maybe third time, I was just like, okay, there's a bit. Watch out for this guy.
3: So people calling it a fluke, that's just them not getting what they want from it. But me, I love to see how it develops and change up. So was it a fluke? I don't think so.
4: At first, I could see why people say maybe it's a fluke, because everyone loses. And you know, it was his first time being on the scene. So everyone expected, of course, Ni to win. But you know, once he's done it consistently, and not even just beating Ni, beating everyone else, it's like, it's not a fluke, and he's just really good. So that's just what it is.
1: बहुत tweets थी. I don't know how much tweet, लेकिन मैं trend कर रहा था उस वक्त पूरे USA के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी. पाकिस्तान में कोई third number पे, USA के अंदर पहले number पे मैं trend कर रहा था उस वक्त. USA is massive. तो वहाँ पे trend करना is a huge thing. और Evo की वजह से I was trending in USA. I was getting a lot of followers. और लोग दुनिया के जहाँ से भी हैं tweets कर रहे हैं. फैला रहे हैं इस चीज़ को जितना फैला सकते हैं. अब मैं ट्विटर से थोड़ा फेमिलियर होने पड़ा था तब तक. और फिर मैंने सजदा किया. वो ज़िंदगी में आज तक किसी ने नहीं किया था.
5: Paying respect. I love what I'm seeing there. Beautiful.
1: और वो वाली चीज़ बहुत वायरल गई. उस चीज़ों को लोगों ने बहुत पसंद किया. फिर लोगों ने सर्च करने लग पड़े. पाकिस्तान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, इस्लाम के बारे में सर्च होने लग पड़ी, सजदा क्यों किया गया, अरसलान के बारे में सर्च होने लग पड़ी, स्टोरीज लिखी गई, आर्टिकल्स लगने लग पड़े. काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने कवर करना शुरू कर दिया. फैमिली तो बहुत ही हैप्पी थी. मम्मा तो बहुत ज़्यादा हैप्पी. जब मुझे मेरी चीज़ बहुत हैप्पी कर रही थी उस वक्त, मेरी मम्मा बहुत हैप्पी हैं कि मैं जीता हूँ. मेरी फैमिली बहुत हैप्पी है. और सबसे अच्छी चीज़ तो इमोशनल भी है, काफ़ी इमोशनल है कि अभी हमने अपनी सिस्टर की शादी करनी थी. और इवन के मम्मा का जब इंटरव्यू करोगे वो भी आपको कहेंगी कि
6: ये जापान जब पहली दफ़ा जीता ना बड़ा टूर्नामेंट, तो उस वक्त वाकई हमें पैसों की भी ज़रूरत थी. ये बेटी की शादी भी थी तो ज़रूरत भी थी हमें. तो उस वक्त वाकई इतना इमोशनल हो गए थे कि हम रोने लगे. ये जब जीता है ना, सिर्फ मैं है एक दो पॉइंट से था कि ये जीत जाए. बस एक पॉइंट रह गया था कि या वो जीता या ये वो जीते. तो माशाल्लाह दुआ भी की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इसको कामयाब, यही वसीला है हमारा कि अल्लाह ताला इसको बना दे.
1: हमारे पास पैसे भी नहीं थे तो और मैं जो 2 लाख था, 2 लाख से सोरी ना शादी होती है और लग भी चुका था 2 लाख. तो पैसे उसके बाद बहुत आम सी चीज़ें थी अंबर के पास, मतलब आम से ज्वेलरी, आम सा पर्स, आम से कपड़े, सारा कुछ आम सा. तो अब शादी किस तरह करना है, तो शादी के लिए उधार लेना पड़ना था. तो उधार दे कोई नहीं रहा था खानदान में.
6: तो बाहर कितने लोगों से पैसे मांगने के हमें मिले, लेकिन फिर मैंने कहा अल्लाह ताला ये जा रहा है ना, तो इसको हमारा वसीला बना दो.
1: लोग जिनसे उधार लेने जा रहे थे कि कैसे उतारेंगे मम्मा उधार, बेटा भी कुछ नहीं करता इनका और हम उधार दे दे तो फंस जाएंगे. तो कोई उधार देने को तैयार नहीं था.
6: तब ये जीते जब तो बस रोने लग गए थे कि खुशी से कि अल्लाह बेशक तो करीब हो के सुनता. अल्लाह कहते हैं ना तुम्हारी शहर से करीब हो, तो वाकई इस तरह सुनना. फिर तो फिर हम रोने लग गए.

0: जाके मैं सही में गिर गई थी कि अल्लाह ने इतना करीब किसे, वो मेरा मुझसे पहली दफ़ा जो मेरा एक्सपीरियंस बाकी अल्लाह ने सुना था।
1: और यही चीज़ काफ़ी अच्छी हुई मेरे लिए और मम्मा के लिए और अंबर के लिए कि मैं कर सका, मैं जरिया बन सका अपनी इस बहन की शादी करने का।
2: Arslan Ash's journey is a story of heart, determination, and unstoppable willpower. From humble beginnings, he rose to become the undefeated champion of Tekken, breaking every limit. But now, the weight of the world rests on his shoulders. He's just one title away from securing his legacy as the greatest Tekken 7 player of all time, if he wins the TWT Finals.
3: Arslan, big day. What are your thoughts?
4: बस प्रेशर में रहने की कोशिश नहीं कर रहा ना, नॉर्मल जितना रह सके उतना वो है कि उस तरह का अच्छी गेम खेल, बाकी जो रहा वो मैं हाँ रेडी, हाँ मैं खुद तो रेडी हूँ। नींद पूरी है, थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली होता है कि आपकी नींद पूरी है तो वो तो पूरी है।
5: कल परफॉर्म तो अच्छा किया, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया। अभी आज का मैं लोहा इससे वो काफ़ी अच्छा किया तो वो है, उसके बाद उल्सा सारे कोरियन ही आए हैं, छह तो कोरियन है, एक जापानीज है, उसके एक पाकिस्तानी, देखते हैं क्या होता है।
3: पाकिस्तानी है बापियो खाली इस बार,
5: हमेशा ऐसे ही था, एक पाकिस्तानी होता लेकिन वो जीत जाता।
1: एक रात पहले मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि नी ने मुझे एक दफ़ा एडवाइस की थी। मैंने पूछा कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रहती है प्लेयर से खेलने से पहले, वो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहती है कि मैं प्लेयर की गेम वॉच नहीं करता, उनका स्टाइल नहीं देखता, मैं बस करैक्टर को देखता हूँ उनके। मैंने पूछा ऐसा क्यों है, कहता है क्योंकि जब लोग गेम इन रियल टाइम अपनी गेम चेंज कर लेते हैं तो आप सोच के कुछ हो जाते, होता कुछ हो रहा है। तो मुझे नी की बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा मैंने लैब नहीं करना, प्लेयर्स को देखना नहीं है, मैं करैक्टर्स को लैब कर लूँगा। अगले दिन मेरा मैच हो रहा है लोहाई से, लोहाई के करैक्टर्स देख लेता हूँ, उनके करैक्टर्स के मूव्स रिमाइंड कर लेता हूँ हर चीज़। लेकिन हाँ, मैं स्पेसिफिकली लोहाई को स्टडी नहीं करूँगा, शाह उस्ताद उन्हें गेम प्ले ही चेंज कर ले सारी की सारी।
3: भाई ये तुम्हारे हाथ में क्या है?
6: ये हैंड वॉल, ये आप ठंडे हाथों से गेम नहीं खेल सकते। लाइक अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो आप कम्फर्टेबली रहते हो, आपसे दुबते नहीं हैं बेटा, तो हाथ का वार्म होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मत की गन भी बोलता मैं बोल दूँगा। Hi, this is Arslan Ash. I want to say thanks to Tekken 7. This game gave me everything, respect, money, fame. It means a lot to me. And I just want to say thanks again. I'm here because of Tekken 7.
7: To be honest, I want Arslan to take it. But Lohai has also been playing out of his mind. So it's between them two. And they're playing in the second match. So I don't know, man. I don't know.
2: The crowd buzzes with electric energy as Arslan Ash faces Lohai in a high-stakes battle. The tension is thick and every move matters.
8: One of these two players will meet him there later on today, but which one will it be? Deal with this? Come from behind?
9: Oh, that is game number one for Lohai.
2: Lohai takes the first round, leaving everyone on the edge of their seats.
1: बहुत टफ चला गया था लोहाई वाला मैच, पूरा का पूरा टॉप 80 इतना टफ था, पर लोहाई का मैच पहला राउंड वो जीत गया। तो आतिफ ने मुझे कहा था कि तुम ये ना दो नॉकटिस, मैं नॉकटिस खेल रहा था और मैंने खुद भी कहा था मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं ना लूँ, मैं कुनिमिट से ले लेता हूँ क्योंकि मैं उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। तो आतिफ बस लाइक हाँ तुम उसके साथ खेलो कुनिमिट से और उसकी गलतियाँ देखो।
2: In the second round, Arslan counters with precise attacks, breaking Lohai's defense. The crowd erupts as he claims the round.
9: Arslan looking good in that last game, and Nee comes up over
8: the
9: stage.
8: Oh my God!
9: Oh, I almost spit my water out, bro. You can't.
2: Nee, coaching Lohai from the sidelines, knows that defeating Arslan will clear his own path to the throne.
9: I did not. Oh my God, this is crazy, bro. Do y'all not understand? This is crazy.
2: Arslan lands a perfect combo, sealing the victory in a thrilling finish. The tension isn't just in the arena, it pulses through Lahore, where every move grips the hearts of fans.
10: चार दिन बाद की फ्लाइट है तो करना दुआ करना
11: बार किसके साथ खेलोगे आप
10: अभी पुनिमिट्सु और नोक्रिस और जोसेफिना नहीं जोसेफिना का काफी लोगों को पता लग गया लेकिन मैं नोक्रिस
11: और आप बताओ इतना वीक भी होगी अब जोसेफिना
10: हां लड़की है पता है आपको तो काफी प्रैक्टिस कर रहा हूं बाकी आप तो कहां साथ हैं और देखते हैं आप
11: मानो
10: भी वैसे तो जीतते हैं तो मानो ने जिताना मानो आपने जिताना ठीक यही जिताएगी मेरे करने
2: Women have always played key roles in Arslan's life, from his mother to the iconic female Tekken characters. Now, Arslan welcomes two more important women, his wife and newborn daughter. Could they be his lucky charm?
1: Yes, I absolutely believe it, because I had two wins after marriage. And before marriage, I had a lot of strange things to hear, which I absolutely believe in. I think the world is a world, so you should listen to every person's story. Some people believe that शादी के बाद में आप उस तरह से नहीं खेल पाएंगे इवन एक करेक्टर है गायल तो वो जब जीतता है ना वो बोलता है कि तुम जाओ और शादी कर लो मतलब गो एंड हैव बेबीज इस तरह करके बोलता है जब शादी कर ली जिम्मेदारियां आ गई बेबी आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते अब आप गए अब शादी वाले अब पेरेंट बन चुके हो घर बैठो आप बच्चे पालो जाके अब तुम तो चैम्पियन तो कहीं कभी नहीं बनने वाले लेकिन आप अभी देखें रिसेंट वर्ल्ड के अंदर आप लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हैं मेसी रोनाल्डो उनके बच्चे हैं लेकिन स्टिल दे आर द बेस्ट इन देयर फील्ड तो ऐसा कुछ नहीं है ये स्टिग्मा है बिल्कुल कि ऐसा अगर हो गया शादी हो गई तो आप जीत नहीं सकते लेकिन मैं शादी के बाद दो चैम्पियनशिप भी वो फिर जीता और मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी और बेटी रहमत होती है तो मेरी बेटी काफ़ी मुबारक रहेगी
2: Arslan Ash challenges outdated beliefs. While the drama escalates as Ni enters the harsh losers bracket to face Rangchu.
8: There you go.
9: But what if you like the legend himself, the Brian player himself? Make some noise if you would like Ni to take the set.
8: All right, here we go. Already blocking. Big one.
9: Oh,
8: staying alive to fight another round. Is this the shift that he needed? Is this the momentum that he needed?
9: Oh!
8: What's gonna happen?
9: He
8: can't believe it!
9: Oh my God.
8: What happened there? All right, guys, here we go. Final game between these two. Give it up for them.
9: Yo, make some noise for these guys, bro. The Tekken is going so high right now. Let's be careful. It has to be careful.
2: In a shocking twist, Rangchu eliminates Ni in loser's top eight. Sending shockwaves through the arena.
8: Is moving on, and Ni unfortunately eliminated at seventh place here at TWT.
2: Ni's chance slips away for the final time. Will Arslan seize the opportunity and make it to the finals?
9: Remember, this is Tekken 7. We're talking about Ni. Make some noise as he is eliminated from the final Tekken 7 Tekken World Tour tournament.
2: Ni's elimination shakes the community, but for Arslan, it brings a sigh of relief. Was he truly ready to face the legend? Or did fate spare him this time?
1: मैं भी घबरा रहा था क्योंकि क्या सीन है कि अब जब आप अपने ओपोनेंट से काफ़ी दफ़ा खेल लेते हो तो उसको आप अपनी चीज़ें बता देते हो काफ़ी ज़्यादा अपना गेम प्लान भी शो कर देते हो मतलब ये तो नीट टू टॉप क्लास ले रहा है यानी कि मेरे से हमेशा हारता ही जाएगा और वो जितना क्रेजी है वो अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो वो हरा कर ही रहता है उस चीज़ को
2: जस्ट एज द रोड सीम्स टू क्लियर A familiar challenge appears. Ulsan, the player who defeated Arslan in the 2022 TWT Finals, now stands in his way to glory. The stage is set. The tension is unbearable. Can Arslan overcome his past and reclaim his crown? Or will history repeat itself? Hearts race. Breaths are held, and the atmosphere is electric. Arslan feels the weight of the moment.
8: He's got the bomb. Well, she is definitely out here to steal some hearts. Can she do it right now? Ulsan, I talked about this throughout. He has a sliver.
9: Went for backswing blow again. Arslan says no. Just a small dash forward.
1: Unke Ulsan wala match, I think main zindagi mein kabhi itna tough match nahi khela life mein. Jitna Ulsan aur mera match tha. Winners final.
8: it. Both of them work. Final round here, one apiece.
12: Catching the sidestep on top of it. Goes for the spin, not gonna work out. 1-2-2.
8: He's definitely brought some of the stuff that he's been studying and labbing. Oh, ooh, and another big block against on the down three. He's gonna have to watch out. He wants it. He wins.
9: Ulsan asking the crowd for more. This is a race to three, and Ulsan is asking for more.
12: 14 seconds left on the clock.
8: Arsen has access to range drive now. Oh, he's gonna get it. Then the follow up, the big sweep. I can't believe he's.
1: मतलब वो मैच ऐसा था कि अगर मैं हार जाता मैच तो मैं इतना डिमोटिवेट हो जाता था क्योंकि उस पॉइंट पर हारकर आप हार अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो तो वो मैच जीतना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था
9: flag in the crowd. I saw two of those bad boys.
13: I'm just gonna take a page from Steve. Good ass Tekken.
14: Good
13: ass Tekken.
14: Good.
13: One more.
15: I'm gonna be real, man. I just want to reset. Two more.
16: Arthur. All the way. I love Arthur.
8: Oh my God. Here we go.
2: The match is intense, with every move increasing the tension.
8: In the winner's side grand final. Arthur fighting Gary.
2: In a show of pure skill and determination, Arslan defeats Ulsan, securing his place in the grand finals.
9: Achim comes out. Oh my God.
8: I can't believe the sequence is
17: working.
8: Not say a thing, but look at that. Arslan standing strong, moving
9: close. He's close.
8: Look, he's emotional right
9: now. He's right there, bro.
8: He's so close.
1: After that, I was going back to the back and I was literally going to win. How do I win? वाकई मुझसे वो मेरे मोशंस आप देखोगे कि मैं बहुत ज़ोर से मैंने वो किया था जीत के और आतिफ भी आया था और आई वाज लाइक सिटिंग देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स और अपना हेड डाउन किया हुआ था और वो बहुत इंटेंस मोमेंट था मेरे लिए उतना इंटेंस मैच मैंने नहीं खेला
2: नाउ द स्टेक्स आर इवन हायर एज उल्सान प्रिपेयर्स टू फेस CBM द विनर ऑफ दिस थ्रिलिंग मैच will meet Arslan Ash in the finals of Tekken World Tour 2023, the last Tekken 7 tournament.
8: He has to be careful. Oh, he got him! He got him! And just like that, CBM secures a spot in our grand finals and Ulsan out of the tournament. Oh my God!

0: With the grand finals in sight, Arslan Ash stands on the edge of immortality. Just one win away from cementing his place as the greatest Tekken player of all time. With the crowd roaring and the light shining bright, Arslan feels the presence of something greater. His mother's prayers. His silent armor, steadying his heart and guiding his moves.
1: मैं बिलीव करता हूं कि मैं इवन के टूर्नामेंट से पहले हर चीज से पहले अपनी जीत से पहले मैं उनसे दुआ भी करवाता हूं कि आप दुआ करना आई डोंट नो कि उनके जाने के बाद मैं क्या करूंगा और कैसे सरवाइव करूंगा और इस और जीतूंगा कैसे मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता और मैं बिलीव करता हूं चीज पे कि मेरी जीत के पीछे काफी ज्यादा उनका हाथ है
2: मैंने अपनी मम्मा से वादा किया कि मैं अगर टेकन वर्ल्ड टूर जीता
1: तो हम उमरा करने जाएंगे और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर हफ्ता दो हफ्ते जितने भी हैं मैं निकालूंगा मैं मम्मा जाएंगे
2: उनकी ख्वाहिश है उमरा करना और मैं ये टेकन वर्ल्ड टूर जीतना चाहता हूं ताकि मैं उनको उम्र पर लेकर जा सकूं
3: And now, as the sole representative from Pakistan, in a changing world of Tekken 7 that he has personally affected, now has the opportunity to get the last title on the Infinity Gauntlet. Oh, yeah.
0: The grand finals have arrived. Arslan

0: being in the tuck.
1: Oi. क्या हुआ बे? ऐसा क्यों देख रहे? स्टार्टिंग में साइबर कैफे जाते थे तो लिखते थे कि क्रेजी डांस बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था मेरे को कि लाइक पीपल आर जस्ट लाइक फ्लाइंग लाइक यू नो इन द एयर दे आर लाइक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड लैंडिंग ऑन देयर फीट वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ मेरा मैंने सब डॉक्यूमेंट्री में बोला ये चीज़ वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया
2: हाँ, वीडियो में ही देखता था वो हाँ. वीडियो में देख देख के ही किया है सब
1: वो रिसर्च किया मैंने बहुत ऐसा कि कहाँ से आता है लाइक क्या टाइप के लाइक यू नो क्या एनवायरमेंट क्या रहता है बैटल क्या होती है और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था ब्रो लिटरली मैं दिन रात एक करता था
2: प्रैक्टिस कॉलेज जाता नहीं था कहाँ जाता घर से बैग लेके जाता कॉलेज जाता ही नहीं है
1: ब्रो मैं एक एक माले पर चढ़ के बैक फ्लिप मार देता था लिटरली शी इज नेवर सीन मी डांसिंग Only time that she saw me dancing was 2019.
3: This is Red Bull BC One, the most prestigious B-boy, B-girl stage on the planet. You know the flying machine.
1: That was the first time when ever any Indian stepped on the world finals. मेरे लिए भी बहुत अलग प्रेशर था कि भाई मेरी मम्मी देख रही है हाँ इतने सारे लोग
2: सब लोग बोलते थे ना अभी मतलब फ्लैग मशीन आ रहेगा अभी तो मैं आजू बाजू में सब बैठ मैं बोली मेरा बेटा है बोला आपका बेटा है मैं बोली हाँ मेरा बेटा है बोले ये जो है ना इधर का स्टार तुम्हारा बेटा है तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हो रहा है
1: मेरे को लगता है कि वो गिफ्टेड था कि वो ब्रेकिंग मेरे को मिला और एक्चुअली मैं ऐसा मीडियम बन गया कि और उसको अलग लेवल पे लेके यार अपने कंट्री में

glib. If music comes on, it's a glib. It defines smooth, slippery moves. So there are 3-4 moves. है. So like, first I do namaste namaste when I go international. Namaste and this. Pura ye. चिल्ला लो जैसे मैं स्लिपरी बताया तो मैंने खुद धक्का देके और घूमना ऐसा कुछ करके देन दीज मोमेंट्स ये सब जो मेरे वो दिखाता है लाइक ये सब चीजें हो गई मुझे यही बताता कि आप हर चीज हंसोगे क्योंकि नाम इन्होंने दिया ही चिढ़ाते थे मुझे बहुत ज्यादा सो these things also जो मैं करती हूँ battle में मैं अपने आप को मानती हूँ कि दो person है मेरे अंदर एक सिमरन है और एक glib है तो glib के दो मतलब है अगर सिमरन का देखा जाए तो बहुत talkative person जो कि मैं generally हूँ और अगर glib का देखा जाए तो वो मेरे moves defend करता है slippery sleek बहुत smooth

0: Ochoa goes through the fence.
1: Here you go, Bobby.
2: तेरे अंदर वो इतना हंगर था कि मुझे जीतना है जीतना है यार इस साल जीतना है तो इंजरी तो कुछ नहीं करना है 2023 से आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हुई है रेड बुल से क्योंकि मेरे पास एक टैग लग गया कि रेड बुल DC1 विनर है यार ये
3: रेड बुल जीतना था कि इंटरनेशनल जाना था तो रेड बुल ही एक ऑप्शन था अगर वो जीतेंगे तो इंटरनेशनल जा सकते हो ना

पहले तो जब देखा मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था ये ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोग तो मतलब स्टंट काउंट करते हैं, एज स्टंट काउंट करते थे वो टाइम पे, वो एरा में जिसको आता था ब्रेकिंग उसका इज्जत करते थे लोग एरिया वाले। इज्जत मतलब अगर वो कोई बर्थडे में जा रहा है तो उसके लिए चेयर्स आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा, केक आ रहा, सब ऑटोमेटिक चल के आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को भी चाहिए इज्जत भाई, मतलब समझेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उन लोग अप्रोच किया कि मेरे को भी करने का, तो वो लोग ने

0: मार के भगा दिया, नहीं सिखाएंगे बोले। एक सेलिब्रिटी टाइप ऐसा घूम रहा हो, ऐसा कोई रैंडम आगे बोलेगा मेरे को सिखाएगा क्या एक्टिंग, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा भगा दिया मार के। फिर मैं उन लोगों को 2 महीना फॉलो किया दूर से, ऐसा 100 मीटर से ऐसा देख रहता था क्या क्या कर रहे, फिर अपने साइड जाके प्रैक्टिस करता था। एक टाइम पे 150-200 बी बॉय एक एरिया में, और अभी कोई है ही नहीं क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा था, डेडली था, तो सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लोगों को जॉब करना था, कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग भाग रहे थे पुलिस से। तो गनी एग्जाम्पल शफी वसीम भाई लोग सब लोग सेलिब्रिटी थे हम लोग के लिए, मतलब अगर वो लोग हम लोग के प्रैक्टिस प्लेस पे आ गए तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, चाहे 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ देखेंगे सब। तो बस उन लोग के वजह से ही हम लोग को इतना हिप हॉप मालूम पड़ा।
1: मैं उसको बोला कि तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोला रे, मतलब कि वसीम भाई ये लोग बाकी लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज थे, अब भी मैं दूध लेके आया इसके लिए इसके घर पे।
0: टाइम बदलता है भाई,
2: फर्स्ट नॉलेज उसके बाद में दूसरा कुछ।
1: थोड़ा मजाक मस्ती है, मैं थोड़ी खींच देते हैं मेरी, क्योंकि एक एज भी हो रही है मेरी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है करने से, बोले भाई बस कर दो, हो गया। मेरा नाम वसीम है और मैं रॉकफिश शुरू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड, और मैं वन ऑफ द फर्स्ट बी बॉय में से एक इंडिया में आता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हम लोग बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी।
3: यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ्लोर बनाया था, हम लोगों ने खुद के पैसे से ये चीज़ बनवाई थी।
1: यहाँ पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा फिशर एरिया है। प्रैक्टिस करके घर पे जाते थे, हम लोग की बॉडी से जो स्मेल आती थी फिश की, हर कोई गालियाँ सुनता था घर पे। 2011-12 बहुत अच्छा टाइम था, वो टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी आर्टिस्ट लोग से, बी बॉस लोग से, बैटल्स के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता था।
4: नहीं नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकते भाई, ये सब नहीं कर सकते, हम लोग यहाँ पे हिप हॉप के वजह से भाई, हिप हॉप हम लोग को ये सब नहीं सिखाता।
5: हो जाता है भाई सीन, रियल हो जाता है, लाइक यू नो बैटल थोड़ा इंटेंस हो जाता है कि यार।
1: एटीट्यूड क्या होता है, सामने वाला इतना डर जाए कि अपनी चीजें भूल जाए, एक एटीट्यूड होता है। नहीं बाकी मैं ही हूँ खाली यहाँ पे।

0: मैं शेकिंग लाइक व्हाट.
1: कपड़ों से तो बहुत वो है इसको, रोज जाना.
2: क्योंकि हमारा ब्रेकिंग है फैशन के बारे में. मम्मी, मैंने मम्मी का शादी की ड्रेस को पहना तो मम्मी कितनी खुश होकर देखती रहती है उसको पूरे दिन. जितना ब्रेकिंग को नहीं देखती उतना इन सब चीजों को देखती है.
1: शादी की बड़ी
2: तो मैं जैसे बता रही हूँ ना, मम्मी आज 1,00,000 लोग देख ली. 1,00,000 लोगों ने देख ली क्योंकि इनके लिए 1,00,000 तो बहुत बड़ी बात है. 1,00,000 लोगों ने वीडियो देखी. फिर मैं बोलूँ मम्मी 1,000,000 हो, इतना इतना चला गया, उतना चला गया. तो मम्मी बहुत खुश होती थी. सबसे ज्यादा जो मम्मी ने फेस किया है वो ये कि मेरे को मम्मी को फैमिली से पूरे आसपास के लोगों से बहुत सुनने को मिला है मेरे बारे में. ये आपको पक्का आपका नाम डुबोएगी, कहीं चल जाएगी, घर छोड़ देगी.
1: मैंने तो बैठना ही छोड़ दिया फिर लोगों को.
2: मम्मी रोती थी मेरी बैठ के क्योंकि मम्मी मुझसे तो लड़ नहीं सकती क्योंकि मैं बता देती मम्मी कुछ भी गलत नहीं कर रही. और मम्मी रोती थी कि मैं क्या करूं, मैं सुन नहीं सकती अपने बच्चों के लिए इतना गंदा ये वो.
1: ज्यादा लड़कियां तो करती नहीं, लड़के ज्यादा वो है तो सुनने को बहुत मिलता था वो तो. लेकिन मैंने सुना सबकी.
2: जो लोकल बैटल होती थी उसमें साइफर में ज्यादा लोग होते नहीं थे, 4-5 लोग खड़े होते थे. तो मम्मी बोलती थी कि 10 लोगों के बीच में नाच के आ गई और पैसा इतना खर्च करके आ गई तो तू बड़ी बड़ी बैटल से
1: छोटी छोटी बैटल सब अटेंड करती थी.
3: This with the GG rap karu 1-4-5-1 gang mera needy Friday se freaky FRIENDS mein main Phoebe let me be habibi.
4: There were a lot of jams on small scale. People used to like, you know, cypher a lot. People used to like exchange a lot and it was very raw. So breaking के बहुत सारे layers हैं. There's footwork, there's top rock, there's power moves, there is freeze. These are the core things जिसमें बाकी सारी चीज़ fit in होती है.

0: काफी मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपटीशन था मेरा और मेरे को काफी भारी मूव करने पड़े। स्टार्टिंग में मेरे को हार्ड लगा था, बट मेरे को पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं ब्रेकिंग क्यों कर रही हूँ, एंड देन आई मेड इट। Put your hands up so I know you're hardcore. Breaking, to be honest, बहुत hard है। Breaking कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब उसमें सीखते जाओ, उसमें explore करते जाओ, खुद अपना character ढूंढ रहे हो, फिर power moves unlock करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सीखते जाओगे, hard पे जाओगे, उतना आपको injuries के chances है। कोई मैट नहीं वैट नहीं, फ्लोर पे कर दिया, गिर गए, गर्दन पे लग गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कुछ ना कुछ नहीं इंजरी हो गई।
1: तो बेसिकली पहला मेरा लोअर बैक गया था, फिर उसके बाद शोल्डर टूटा था, फिर मेरा लिगामेंट गया, फिर अभी रिसेंटली वापस कॉलर बोन टूटा है। जहाँ पे प्रैक्टिस प्लेस मिल जाता वहाँ कर लेते, अभी नेहरू स्टेशन मिला, अगर कोई स्टूडियो ऑफर करेगा उधर भी जाके कर लेंगे, है कि नहीं? अपने को स्टूडियो मिलेगा अपन स्टूडियो चल देंगे।
2: टाका दे टाका। तो हम लोग बहुत टाइम से बहुत सारे वर्ड यूज करते आ रहे हैं, पर उसका कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे बैटल में टाका दे, एकदम अच्छा मूव था, टाका दे, जैसे मैं कुछ चाया वार दे दिया तो टाका ही लगेगा ना उसपे। टाका दे, दफन दे,
3: दफन, ओ बरीड, लाइक भिंगरी चेक हो गई भाई तेरा मूव देख के, मतलब भिंगरी चेक ऐसे, मतलब मेरा सर घूम गया तेरे को देख के ब्रो ऐसा।
4: A reason why I don't have these big moves like some of the giants in India, you know, because I don't train too hard. I just like to have fun on the dance floor, off the dance floor, at practice.
5: Wham! Bam! Oh! Mike. Destroy that mic.
4: It's fun. For me, battles, it's fun.
6: I think it's fun to express yourself in front of an audience. You know, if you're in the moment, the whole vibe changes. Everyone is like paying attention to what you're doing. It's liberating.
7: Ben Man, he really captured the moment. It was very entertaining to watch, and sometimes if you win the crowd, you win the event. You can see in his character, he likes to have a laugh and a good time, and he showed it on the stage.
8: Wild Child was probably expected to win. We know he's really good. I'd never seen Ben Man before. When you're going against someone who probably will win, it can make you be like, I'm just going to give everything.

0: मेरा ऐसा नेचर है कि मैं बहुत खुश रहने वाली हूँ, इसी वजह से मेरे को लोगों से प्यार मिलता है कि जिस तरह से आप मूव्स को इतना इजीली दिखा देते हो ना कि लोगों का मन कर जाता है सीखने का या करने का। अगर ब्रेकिंग सेट के मैं कुछ भी वो करती हूँ तो मेरे को इतना लव नहीं मिलता जितना मुझे ब्रेकिंग से मिलता है, क्योंकि बाकी इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े हैं, बट आपका डिफरेंट क्या है? तो मेरा ब्रेकिंग है।
1: आई टेक माई ब्रेकिंग इन टू अदर areas into other stages and platforms. So when I model, it's either just posing in clothes or it's dancing clothes. So again, I break, I do graffiti, I paint shoes and jackets, so I customize for people. I was able to like monetize on that. People place orders and wanted me to paint stuff. I'll show you some other stuff that I painted. So that's one of the jackets that I painted, my doodle style. I painted the sleeve of this jacket. At the end, it just depends on how you put yourself out there. I tell everybody, like, don't just break, do something on the side.
2: But this is how this federation is also working, like how we got opportunity to go outside, but still they are not giving us the money to go. Like, we have to book our own tickets to represent India. Yeah. Like, this is so stupid.
3: Yeah. उलो कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही बात बोलूँ तो। अंकल उलो को कुछ पता ही नहीं है डांस के बारे में। हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं, हम लोग के नज़र में ओलंपिक रहते हैं ना, तो उसमें लेयर्स भी रहता है ना, समझ रहे हो? मतलब अगर आपको एक साल में 11 कंट्री जाना है, सेल्फ फंडेड, आपका मिनिस्ट्री कुछ नहीं है, आपका कुछ भी बैकअप नहीं है, आपको आपका रेंट भरना है, आप कैसे जा सकते हो? मतलब आपको क्वालिफायर करना पड़ेगा ना ओलंपिक जाने के लिए। सारी चीज़ अगर मैं सिमिलरली अगर करता था दूसरे कंट्री में, 100% में ओलंपियन रहता था, बिकॉज आई एम द बेस्ट बी बॉय इन इंडिया, नो कैप।
4: ऑन द वे, लेट्स गो।
3: हम लोग यूजुअली ऐसा ड्रीम करते हैं कि लाइक इंटरनेशनल, लाइक यू नो, वर्ल्ड में एंटर करना है, हम लोग को देखना है, वो एक्सपीरियंस करना है कि और लोग कैसे डांस करते हैं। ये लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग हाईएस्ट ऑफ हाई लेवल में कम्पीट करते
5: हैं। मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को एरिया में इज्जत मिले, बहुत कुछ मिला है, कपड़े पहनने का ढंग, पासपोर्ट भर रहा है, पैसा कमाना समझ में आ रहा है, लोगों से बातचीत कैसे करना है, वो ऐसा बहुत सारा चीज़ मिला, मतलब जो भी अभी आज है सब ब्रेकिंग ने दिया।
6: The Indian scene is just growing and it's stronger than some of the countries I've been to.
7: I thought that the scene was a pretty similar level to the UK.
6: They just need a little bit like of guidance, maybe some ability to travel, and they could really do some damage.

0: Flying Machine is very explosive when he breaks, but he takes his time between. The pauses are always clear.
1: Tornado is very real. दिखता है उनके emotions, दिखते हैं उनके face पे कि वो कितना सब कुछ करके वहाँ पर पहुँचे हैं और वो बहुत real लगता है.
2: मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ. अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं अगर जॉब भी ढूंढूंगा तो मेरे को ऐसे कुछ भी मिलेगा, डिलीवरी का, वॉचमैन का, यही मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा. ठीक है, बट वो 15 साल में मैंने खुद को इतना डेवलप किया ना कि मैं इंडिया को कुछ 15 कंट्री रिप्रेजेंट कर चुका हूँ.
3: इतिहास बन गया है, थर्ड प्लेस.
2: मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में सिखा चुका हूँ. जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसको क्या करना है.
4: पूरा लाइफस्टाइल है ये बेसिकली, और वो स्ट्रीट एम्पावर्ड है. आई डोंट थिंक कि हाई क्लास और लाइक यू नो पीपल कैन ऑल्सो, आई मीन दे कैन डू इट 100%. दे कैन नॉट लिव इट, यू नो दे लैक समथिंग.

0: inside.
1: जो अभी जो हमारा ब्रेकिंग है अब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. 10 साल बाद हम लोग ही ओजीज बन जाएंगे, हम लोग ही उनके लिए हिस्ट्री होंगे. जिनको मैं देखती आ रही थी मैंने उनके बराबर पहुंची और फिर उनके आगे निकली, तो मैं अपने आप को मानती हूँ ऊपर. मैं चाहती हूँ और बिगर्स एटलीस्ट उनके अंदर हंगर होगी इसको हराना यार, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा वो जागे. मुझे किसने हराया अगले साल मैं उसको हराऊंगी. बारहवीं इज लाइक माई ग्रेट कॉम्पिटिशन क्योंकि हम लोग 4 साल से फाइनल्स में मिल रहे हैं हमेशा.
2: मुझे बारबी अच्छी लगती है, मतलब वो जिस तरह डांस करती है, जिस तरह वो मूव करती है, जिस तरह वो फ्लिप्स वगैरह मारती है, तो बहुत अच्छी लगती है. उनका काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है. ऊपर से वो मुंबई से है तो मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे मुंबई जाना है. तो अगर मैं जाऊँगी तो उनसे वहाँ पर ज़रूर मिलूँगी.
1: अभी तो बारबी घर जाके रहे, उसके बाद मैं जाऊँगी. नहीं, बारबी के घर जाके रहे.
3: Glib is like, I don't need to run, I can walk. You can see the difference with her and Barbie. Barbie's like very powerful and very fresh and new.
4: This is BC One India. The stakes are high here. But sometimes you just need to take a deep breath and just relax and just be in the moment.
0: Bro, this might be peace. Like, you know, where I'm at the most peace. You know, this was the first Red Bull BC One India trophy, 2015. I started off watching Red Bull BC One, right? So वो time पे I was like, अगर ये इंडिया में होएगा कभी भी तो मैं ही विनर होगा. Like I manifested it and this is my reality. Like an average kid from Jogeshwari East to somebody.
1: Flying machine मेरे लिए एक champion है.
5: 12 के 12 महीने form में रहते हैं.
6: उसका training, उसका system बहुत अलग है.